0: दिव्य एफएम 91 मेगाहर्ट्ज।
1: आम गोते गाहन की वारं हंदार ने तेमी है बाय दोस्तो खांग अने बाय दोस्तो फोनवन जे मेल त फोनवन बर्थडे से हंदां कुरंग अदि मा उंदगु कमे एकम को बिल त दक्कंता दुव हकु संदान नुने तेने करंट बिल फेम बिल फोन बिल कस दहिन नुवान हंदां वेसुरे वगुतुम वगुत फाहिपे मेदोरि को फ्यासावेस ट्रांसफर करेवे कैगेन बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोनवे साडी दो गेम में रिचार्ज वे सम फाहिपे अनलिमिटेड रीलोड अदि रास्टस ಖಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೇ ಮೆದುವರಿಕೋ ಫಹಿಪೇ ವರ ಫಹಿ

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारें कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: कोद्देवे कुड़ा कुड़ा हेव कमकों एहम मीहे गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: दिवे ही एफएम नो दिहे एक मेगाहर्ट्ज दिवे हिंगे मुनिफु हे फिल्वा देनो मुगा अबदुस
3: फिल्म आ म्यूजिक के दुनिया फीनालु मा तैयार त
4: एहेंगे मवाडम पॉपकॉर्न होदा तैयार वे दिवे एफएम गे मुनिफु फिल्म गे दायरा गे खास शो एमएफएस आहार पतक
3: बॉक्स ऑफ यू गे एम मे हिट फिल्म तगु मावलु मात
5: इरे मेहर की रकम बाबा से मारो कोई रिश्ता नहीं है
4: एमएफओ गे ट्रेलर तक बाला लंग एम कमुदाने सीरीज तक आदि हफ्ता गे
6: तरी decades each life a faded lesser copy
3: of the current theater emme kamuda film toge hasa manzaruta ost bank handa natta anu leve lavata ka ti befulunge magbul tariya kaiku nuadi hasikun
7: kadil sar phone kobbe mihir phone
8: nikam bisnal bala wafir vejjen tikam huttala ahara miuna nichike nubuna
3: emme fas komme haftaiku hukuru de hoge mendur fo de chahai
4: hama ekani nuadi he ekem megahertz dive he fm
9: चंदाई देखा अखा बाजू माँ हमरे रखा ई देख करे मनवा तैया थका
10: एम में फर्स्ट
11: मामा हाल की है ने
12: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुल मेंगे हाल की ने ता
11: आरे में मिस्रांगल मामा कौन का में तती कोल्लनी गेने मामा आहरे में आता
13: मामा ती हाँ बोल रखा मुले ने कमर ने आहार में ती कं कोल्ला फाना
12: दारी फुलो में हाँ इधर अंगडे ती गु ता मामा गातंग्यास मामा हालु बलाला मामा के कंतत्ता कोल्ला देती मामा वारंग उफावे

0: ऐसा से पर लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या बाइट तू जाऊन उठ न बिट न लाऊ नहीं की तू तेरे भाई के राडे नहीं देख तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के नस्ते आ देरु में को मैं हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हो गेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
3: वर्जन 2.0
4: Version 2.0
5: Nodi ek megahertz divai FM abadus emmegat
6: Mi Ahmad Amit

0: अस्सलाम वालेकुम दिवे एफएम के एमए हाय हुन तेरिना वरंग उफावर वगुत कोलकन इदें वर्जन 2.0 मी शो के फरातुं एफएम के एमए हाय हुन तेरिना मरहबा शो यकी लवतो के रिमिक्स आदि कावा लवतकन हासा को केन कुरिया केन दा शो ए मी शो इन हिग्याम लवतके ते ए हुन तेरिना केनिस देवेतो मसके कुरानन लवतो के एरा मिहार हुरी तफात आदि लवेन एस फवा बदल तवेस मी शो के फरातुन ते ए हुन तेरिना हमे केनिस तेना शो या एकुगा मी हफ्ता का मी बदल कोल दी समा ettan has ahare kurin evs music i ala ten ufeddumuge ma kurin emme furetama insanun aduta neruni emihunge ada hashiganu peenun kogen insana ge adu ufadda nizam tarakki bumaiku ajjehuma fan bimuge jehun fada ridamiko kankam ge tereng lavakiyun ufedunu
1: before music had a name sound and rhythm already existed all around us Think about it like the rustling of leaves. Birds singing in the morning. Thunder rolling in the sky. The rhythm of footsteps. A baby crying or heartbeat. These natural rhythm and tones were the first music not made by humans.

0: चलो।
1: इंडिया के मशहूर लवकियुंतेरिया अभिजीत भट्टाचार्य वनी नवारस्ते का फस्तल स्थिमन आहार के क्लासिक लवा चलो एक बार फिर से अमिल्य री रिकॉर्डिंग हदा कवर किया फा अभिजीत के मडमैतिर अडुं किया फवा मीला वैगे रागुस वनी वर मडमैतिरी अडवहालम फसे हराग का तैयार को फा एना मिलावा कवा को गेंकिया फवनी ट्रिब्यूट है दिनमुगे को तुं।